0: check. City FM, in studio time.
1: Snapping air. Bihana ko in Hanover.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका पांच सोलू कुंडू
3: और प्रिंट मुजुकर को रकम सवारी साधन को नंबर एक गणे संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्रही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन को वार्षिक रूपमा

0: संस्कार और संस्कृति जीवन बनने था सबके दूसरी से आज का आत्मता यति कार्पेट को विगत तीन दशक देखी को सुनो साथ यति कार्पेट के अंदर कार्पेट को पसारे यति को लोगो हमें न बिस्म होना यति कार्पेट कार्पेट को शिवसा
1: लैंगिक परंपरागत भूमिकालाई रूपांतरण गरौं समानताको

खबर फिर एक पटक विभिन्न कार्यक्रम का साथ गणतंत्र दिवस मनाई काठमाण्डौ को टुडीखेल में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सच्चा राष्ट्रपति को संबोधन आज सुदूरपश्चिम र गण्डकी में ठूल वर्षा को संभावना केही ठाउँ में पर्सिसम्म हावाहुरी चलने दिउँसो चार बजे संसद को संयुक्त सदन में अर्थमंत्री बजेट प्रस्तुत करने तैयारी बजेट को आकार 20 खर्ब भन्दा माथि को हुने सुशासन र आर्थिक पुनर्संरचना में जोड़ अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को रकेट परीक्षण में विस्फोट फेरी उड़ान में फर्किने कंपनी को प्रतिबद्धता र काबा महिला भलीबल में तेस्रो स्थान का लागि नेपालले आज भारतसँग खेल्दै दिउँसो 12 बजे को नेपाल खबर सकियो दिउँसो 3 बजे नेपाल खबर लिएर फेरि आउने नै छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौंमा 90 मेगाहर्ज र उज्यालो online.com पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला शरीरलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त पानी पिउने गरौं नमस्कार।

0: 사쿠라 버스톱.
1: अत्यंत दीदी यू नया घर बनाओ कस्तो तनाव को काम रहे बिजुली को सामान कि बजार का चार चार वा पसल चारे कत्य पाइन ओह अब सामान लिख काठमंड जान् पर्ने हो कि क्या धत बहनी तुम्हें कस्तो समना में छो बिजुली को सामान लिख काठमंड कानू हम्रे सुरुखुमो में सब थोक पाइन त ए हो र दिदी कहाँ पाइन्छ म त खोज्दा खोज्दा थाकिसके हो ल सुन बहिनी सुरु दुखुमा नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा भएको शान्ति स्टोर एण्ड सप्लाई छ नि त्यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण नयाँ सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छन् बोर्ड आधुनिक सिल्क वाइरिङका सामान जे खुजु त्यही तयार लौ नयाँ सामान पनि पाइने पुरानो सामान पनि मर्मत हुने म त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तै भयो नि दिदी
2: हजुर बिजुली को भरपर्दो सहयात्री शांति स्टोर एण्ड सप्लायर्स सोलु दुखुण्ड नगर पालिक वडा नंबर पांच सल्लेरी सोलुखुम्बु यहां बिजुली का संपूर्ण सामान होलसल तथा खुद्रा मूल्य में पाउन का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर कुल नारायण श्रेष्ठ 97-63-00-57-84 विवेक श्रेष्ठ 98-62-82-00-00 सुनु धुपकुंड नगरपालिका पास पल्लिरी सुनुखुम्बु
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्दर एफएम सुन्दर एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली पप गीतहरू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को नियम क्षेत्रमा
1: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तेल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842803000
0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा
2: होंडा का विशेषताहरू
1: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तेल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842880300
0: सुनी।

0: Sound check. Studio FM. Studio time.
1: It's 1 p.m. दिवसको एक बजे
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
1: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: Raio Rádio Ninho no FM.
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सूर्या फिल्म स्टूडियो टाइम
3: स्टूडियम न्यूज सपोर्ट 2 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वरामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतुन नगर पालिका 5 सोनू कुम्बू
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्ने एफएम सुन्ने एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीत

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Studio time. In studio time.
2: It's 3 PM. News for 3 PM.
0: Time check को साथ में New Star Digital Colorland तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोनू दुत्तु नगर पालिका 500 कुंभू

0: সিম সংযোগকর্ত রকমের তোবারি সাধনক নম্বর এখন করে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারি সাধনক বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने সওয়ারি কর নবীকরণ দফতর লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধে বিতরণ হেরনকা লাগি সম্বন্ধিত ইয়াতায়াত কার্যালয়মা গৈর কর প্রিন্ট মাগ্ন ব্যাঙ্ক ভোচার গর্ন অগি সওয়ারি কর তথা দফতর এখন গর্ন তথা কর বুঝাইপছি প্রাপ্ত হুনে বিমা আফ্নো বুঝাইকো করকো রকম র আফ্নো সওয়ারি নম্বর এখন গর্ন হুন এসেই সূচনা মার্ফত অনুরোধ গরিন্ছ
1: কোশী প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় বিরাজমান
2: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिनेर दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत गरौ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौ जीवन रक्षा गरौ
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: बालबालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग गर्दछौं
5: लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं बालबालिकाको संगतमा ध्यान दिउ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिउ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमा जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश
0: सवारी साधनको इन्जिन र टेम्पो शृंखलाको सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ
1: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराजमान
0: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउ
4: सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौं सड़क सीमामा अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौं सड़कको नाली ठाउँ तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउ सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं
1: सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भाग प्रयोग नगरौं
4: जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्ने गरौं सड़कको तत्काल मध्यमार्ग गर्ने गरौं यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: आया भनेर पो बसेछ त बिरामी भयो क्या हो
7: तीन दिनदेखि दाँत दुखेर म त हैरान भए नि उपचार गर्न काठमाडौँ नै जानु पर्छ
6: कति पीर मानेको के को काठमाडौँ जानुपर्छ त्यही सल्लेरी बसन्त बजारमा दाँतको सबै सेवा सुविधा सहितको एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिक आइसक्यो त बरु जानुहोस् त्यही
7: हो र के डेन्टल रे
8: एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिक सुलु दुत्कुण्डे नगरपालिका पास बसन्त बजार सल्लेरी सुलु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभ

नगरी निर्माण शुरू करने कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रीय प्रसारण लाइन निर्माण तीव्रता दिने राष्ट्रीय ग्रीड नपुगे कर्णाली का स्थानीय तह में विद्युतीकरण तीव्रता दिने ग्रीन हाइड्रोजन को व्यावसायिक उत्पादन को प्रारंभ कर हेटौड़ा में 2.5 मेगावाट क्षमता को ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट परियोजना को रूप में कार्यान्वयन करने सुखायाम को पीक आवर में हुने विद्युत अभाव संबोधन कर काठमाण्डू उपत्यका में 100 मेगावाट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली को कार्यक्रम प्रारंभ करने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाड़ी बढ़ाउन आवश्यक बजेट को व्यवस्था गरेको छु। ऊर्जा उत्पादन प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण का लागि ₹85,54 करोड़ विनियोजन गरेको छु। सिंचाई आगामी आर्थिक वर्ष थप 15,800 हेक्टर खेतीयोग्य जमीन में सिंचाई सुविधा पुर्याउने छौं। यसबाट खेतीयोग्य सिंचित जमीन को अनुपात 64% पुग्ने छ। नदी नियंत्रण तर्फ 70 किलोमीटर पदबंध निर्माण र 210 हेक्टर जग्गा उकास गर्ने छौं। बबई सिंचाई आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 1,066 हेक्टर जमीन में सिंचाई को सुविधा पुर्याउने छौं। राजापुर सिंचाई आयोजना को पुनर्स्थापना को कार्य अगाडि बढाइनेछ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना को हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने यी आयोजनाका लागि ₹5,63 करोड़ विनियोजन गरेको छु। सिक्टा सिंचाई आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ 5,000 हेक्टर जमीनमा थप सिंचाई सुविधा पुर्याउनेछौं। यसका लागि ₹2,55 करोड़ विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी मरीन डाइभर्जन आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको लागि पुनः ठेक्का लगाई 4 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य शुरू गर्नेछौ। यस वर्ष यसका लागि ₹2,98 करोड़ विनियोजन गरेको छु। बागमती सिंचाई आयोजना को स्तरोन्नति गरी सुनकोशी मरीन डाइभर्जन आयोजनाबाट थप हुने पानी को उपयोग बारा रौतहट सर्लाही महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमीन में सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न ₹53 करोड़ विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिंचाई आयोजना को कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्नेछौं। रानी जमरा कुलरी आयोजना को लंकी खण्ड को पूर्वाधार विकास गर्नेछौं। बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना र प्रगन्ना बड़कापथ सिंचाई आयोजनाबाट 2,380 हेक्टर जमीन में थप सिंचाई उपलब्ध गराउन ₹1,21 करोड़ विनियोजन गरेको छु। नौमुरे बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजनाबाट कपिल वस्तु में सिंचाई गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न गर्नेछौं। बाढ़गंगा सिंचाई आयोजना को पुनर्स्थापना र मरमत सम्भार गर्नेछौं। नारायणी सिंचाई आयोजना पुनर्स्थापना का लागि बजेट छुट्याएको छु। सुनसोरी मोरङ चन्द्र नहर कमला नारायणी गण्डक कोशी पम्प लगायतका सिंचाई प्रणाली को मरमत सम्भार तथा पुनर्स्थापना का लागि ₹44 करोड़ विनियोजन गरेको छु। सतह सिंचाई को सेवा नपुगेका तराई मधेश का थप 3,980 हेक्टर खेतीयोग्य जमीन में भूमिगत सिंचाई सुविधा पुर्याउन ₹1,83 करोड़ विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधि को प्रयोग गरी भूमिगत सिंचाई सुविधा पुर्याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्र का कृषि योग्य टार में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने ₹80 करोड़ विनियोजन गरेको छु। पहाड़ का टार में लिफ्ट सिंचाई आयोजना आगामी वर्ष 2,230 हेक्टर जमीन में थप सिंचाई सुविधा विस्तार करने महाकाली कर्णाली नारायणी कोशी लगायत का ठूला तथा मझौला नदी को व्यवस्थापन कार्य का रकम विनियोजन गरेको छु।

मार्गदर्शन केतंग सन्सिसियो बांगला आदरणीय श्रोता रो मागदे रंगी दचु केतंग री स्वागत मुला प्रिय रो मागदे रंगी चवन मुला रेडियो नामिसियोसी नन्न केतंग सानबला लागी रंगी द लानन धन्यवाद दोनगे मानबा मुला रंगी जे सुभन्दा अगाडी नन्न केतंग सानबला बिबंगदा आसम मुला यारबला केतंग री न्याङजे क्रूस री परमेश्वर ल सहनशीलता बेब विषय री वचन सनबला मुला तिनीनो न्याङ थे विषय री वचन सनसेला मुला रंगनी जे केतन सनसे पुहा बला पत्र पत्रिका सल्लाह सुझाव ला लागि लानन धन्यवाद मुला फेरी हाब दिन रिनो एरंगलेन रंगनी ल सल्लाह सुझाव ला आशा लब मुला नाइ रंगनी ल मिन प्रतिबारी यारके लब मुला एक नम्बर रे मुला विपिन घिमिरे दोहरी पाँच रमाइलो बस्ती गुल्मी क्याम्जे दोस्रो रे मुला उमेश आर्याल मालिक उच्च मावि सिमलटारी गुल्मी क्याम्जे अनि तेस्रो रे मुला हरि पौडेल मालिक उच्च मावि सिमलटारी गुल्मी क्याम्जे अनि उत्तम गर्दी भरभङ पाँच सुन्दर बस्ती गुल्मी क्याम्जे प्रिय रो मागदे एरोङलेन नन्द पत्र पत्रिका पुहावा थम्लेसीको विवाह नै रङ्गिजा अनुरोध लबमुला श्रोता तर याङ परमेश्वरले वचन सन्वपट्टि सेगे तिनी याङ क्रुस्ता सीमा परमेश्वर जे छ्याङ सैदिव शक्ति जन्ममुला विवाह विषयरी बातचित लाए प्रभु येशु ख्रिस्ते दुःख कष्ट सैदिव माले परमेश्वर आबजे थे सर्वज्ञानी मोबमुला थे जे याङला पापला कारण रङला अनुहार याङ क्याम्जे फिक्तोजे तर रङला चाचादा रङला सेम विचार बदलाए आदिने हजुबा गर्न कदे दोहोर्ति लाइनो थे छाङमान थेदा थाहा तब जे आहिन कि थे गर्न कदे थे जे मानबला विषम रोक्तिबा हामसेला मुबला तसी विषम थे सर्वशक्तिमान हिन बमुला जब मिल भीड प्रभु येशु द चुङमदा गेस्य मनी बगैचारी हाजे थे बेलरी पत्रुस जे तरवार टुइसी मिला नबिन थाबिन्जे तर येशु जे सुङजे एजे ठिक डानबा ताङै नला आपद बिन्ती लबा हाम्बा थे जेङा त बाह्र पल्टन भन्दा बढी स्वर्गदून जुटाइदिसी आपिन बार पल्टन किरी 6000 स्वर्गदूत कदे तब मुला यदि परमेश्वर आबला योजना अनुसार पूरा लदोबा पंसम थेजे 72000 भन्दा बढी स्वर्गदूत कदे पुहाबा हामसेल मुला तर परमेश्वरले योजना प्रभु येशु ख्रिस्त क्रुसी बलिदान तबदा पिनबा दुःख उठाइतिबदा अनि बौरी उठतिबदा हिन्दा मुगला जब येशु ख्रिस्त छेक्ची दुःख पिन्जी क्रुस री सेजी थे बेलरी परमेश्वर आबला लानन सेम्खाजी चोट लाग्तिजी तर थेजे रङला योजना बदलाया दिने यदि थेजे रङला योजना बदलाई तिसी ख्रिस्ट येशुदा क्रुस री सिबादा आदनमला विषम याङजे मुक्तिदाता आयाङसेला मुगला थेला हरङ्ग सहनशीलता हिन्ना परमेश्वर आबदेन ज्ञान शक्ति छाङमान से कदे मुसिनो प्रभु येशु ख्रिस्त क्रुसी बलिदान तापद रोका दिने तसी विषम चु परमेश्वर ल मुक्तिला न छ्याङ योजना हिन बमुबला पहिले न्याङ्गी चुरी शिव मुलाकी गेसेमनी बकैचरी प्रभु येशुला पीडा पूर्ण प्रार्थना थेजे निकै प्रार्थना लबलमुला हे गला आबा तब हम समझु कचौरा न क्याम्जे हटै दिबिन सिउ ग तर नलाई इच्छा क्याम्जे आहिन रङलाई इच्छा रि तडिकै मती 26 अध्यायले 39 पदरी चुताम याङजे याङ ममुला यम्बागी लिच फेरी थेजे प्रार्थना लस्युजी हे आबा नै चु कचौरा थुङ मबेलरी चु हर्तिबा अहम सम रङलाई इच्छा पूरा तकै यदि एरङमा पीडा पूर्ण प्रार्थना संसारिक आबजे थेवला पाङसम
रंगला योजना ता बदले आदिना टीबा हमला नापंग सम कुड़ी सी टीबा आहम सेला परमेश्वर जे रंगला चाजे रंगला इच्छा अनुसार लसी को भी वाथना संस्यूजी अनि थे जे रंगला भावना ता थांदी सी थांजे योजना ता बदले आदिनी परमेश्वर जे रंगला चादा होतेगुन थाबिंजी प्रिय रो मागदे परमेश्वर ला सुंदर योजना मुला नथ्यांग योजना मुला न्यांग छंग मान पापी मी का देता सोना लबला लागी तरे न्यांग जे अर्को ताम सी से लमुला येसुला चल रही छेकी यहोदा भेड़ला अगाड़ी गेस्से मने रहा जी थे येसु ख्रिस्ला चेला मदेरी कुरकी हिन्ना येसु ख्रिस्त चुंची प्रधान के पास जा पोर जी थेरी प्रभु येसु दा विभिन्न प्रश्न लजी अनि अजब व्यवहार लजी अर्को ताम फेरी प्रभु येसु लाई थो साजी गिल्ला लाजी अनि फेरी कोर राजे छेकची अनि बेसरी लचार पसार लाजी पापी कदेल उद्धार लबरी दहा बल मिदा थेंजे मुआसे ने थे द सारन दुख पिंजी थेंजे येसु ला निंदा लाजी रोमी सिपाही कदे जन येसु दा थो साजी प्रभु येसु जे बिरामी कदे फन्ना लमाले तांग बमी कदे जे येसु ता निंदा लड़ी बमुला रोमा कदे न्यांजे विचार लदो बमुला थेन्न लागे उदा लबरी दो हाबला येसु दा थेन्जे चोरंग लड़ी बमुला थेन्न नये करता तासी दो हाबला येसु दा थेन्जे मुआसे ने थो साजी निंदा लाजी घृणा लाजी गिल्ला लाजी प्रकाश था अध्याय सूरा पाजे पंग बमुला परमेश्वर आवदेन चाला सहनशीलता ता सीगो परमेश्वर जे रंग लचादा निर्दय व्यवहार लमाले कुड़ी सी साइडी सी सियोजी थे जे रंग ल योजना ता बदले आदिनी थेरंग तेरी नल प्रिय रो मागदे न्यांगला लागे येसु जे दुखा साइडी जी न्यांग जे थे द विश्वास जीविसम थे जे न्यांग द पाप क्यां जे छुड़कारा दन बमला तिंगी ल बचन रे रंगनी त परमेश्वर जे प्रशस्त आशीष तुन छियो गए Amen.

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खर यान्स्युबन मोला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे तिनी लु गेदाङ रंगनीदा खरङ नन्जी तुदे चु गेदाङ यान्छी रंगनीदा तिकै खुल्दुली ताबा मुसम रंगनीला पत्रला नन्छी आश्ल सिची बमुला रंगनीला सल्ला कुई खला कुई खस्युला विवाह रंगनीदा आनन्द जेन बमुला तुदे रंगनीला प्रार्थना लदुब विषय दुगु मुला विषम रंगनीसी कुई खस्युगु विवाह नन्ना जेन बमुला रंगनीदा नन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरंग बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नंबर 8975 ईपीसी 2561 काठमांडू नेपाल ईमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 9847035679 9847035679
0: लसोरोदुगु तिनी चुगेदाङ यासेङनी फेसी निबनमला दोषी खबर चुनुन दुरी रंगनी लंगोनछांगले रूप तबरी थलाब विवा बाच्च लवन नई चुगम फेसिनेला लसो फ्याफुल्ला

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल।

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतु नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

उच्चतम ऑप्शन गराउं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बी दूषक लिने गतिविधि गरौं कारोबार पारदर्शी बनाऊ नफा को उद्देश्य भूता भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याद सकिए नीति परस्पर एक गरी मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु व सेवा को प्रयोग कने हानि नुकसानी भे स्थानीय प्रशासन में उछरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मगौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौं भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगी में स्थानीय प्रशासन में उछरी गरौं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोष्ट प्रदेश द्वारा

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
2: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू.

0: काठमांडू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 9 PM रात को 9 बजे
1: टाइम चेक को साथ में
2: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस
1: सोलुकुम्बु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू